रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, दिन कोई भी हो सुहाना सा ही लगता है जब तक हमारा मन अच्छा है। जब मन दुखी होता है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी खुशियां हो लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन सुखी नहीं है। तो मन को खुश रखना जरूरी है, उसके लिए मन की शांति जरूरी है। तो आइए इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं। मिश्र संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले आज सुनवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये कविता, जिसे सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने और अपनी मीठी आवाज में इन्होंने इसे गाया है जगजीत सिंह ने ही, और एल्बम का नाम है नई दिशा।

और आइए अब जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे, गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को, इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल, इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्शलायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है, इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

0: बजकर 55 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंटलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम

छत्तीसगढ़ ने एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक सहित चार पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ी और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वन विभाग के अनुसार जंगलों के दरवाजे पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से दोबारा खोले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तर बटालियन के सेरवा स्थित वाहिनी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बटालियन के 24 अधिकारियों और जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की टीम ने शिविर में सहयोग किया। इस दौरान जवानों ने नियमित रक्तदान और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
4: मैंने

0: सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है जो

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

0: सुनहरे रे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोज

मर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है, और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूँ और जहाँ तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं, ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है, हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है, लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन ज़िंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह।

0: था, इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और देखिए आपके साथ हुआ भी। मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियों को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं, बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज़ को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज़्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियाँ हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की इस संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
9: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
11: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की रवि भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
9: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली

0: होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
5: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने

0: और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्नलाल भगतराम ने, सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
1: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
2: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
1: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
2: अच्छा लगता है।
1: तो चलिए विषय बता दें आज के।
2: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
1: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
2: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
2: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
1: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
2: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
1: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जो अभी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
2: बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है, है ना।
1: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
2: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
1: और अब क्या करना है?
2: एक गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरो

0: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
1: मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी, जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
2: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
3: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
1: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
0: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
1: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती,

0: चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकते। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
2: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
2: कहां से आते हो भैया?
1: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
2: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
1: शीतला, बहन एक बात पूछूं, बताओगी?
2: हाँ।
1: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
2: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे, अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
2: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
2: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
4: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई।
5: और इंतजार

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज़ है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: और ना? दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल, लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियाँ या बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, उन्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी

0: फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या
1: ये
0: कुछ
1: सच
0: काम
1: में
0: का कर
1: काम
0: रहे
1: कर रहे
0: हैं
1: हैं
0: ऐसा हो जाता है. उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है.
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई. ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है. तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए. और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए. उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए. और ये जो बातें होती हैं ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है. और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है. कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है. तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए.
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए.
0: बिल्कुल, मना लेते हैं.

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है, क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है, तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं, जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए, वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी, और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने

0: समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं, और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाएं।
0: बिल्कुल। एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयों और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयों सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाइयों खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के, परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूड़ी बनाते हैं

0: वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेड में पूरी होती है ना वो कड़क
1: रहती है, हाँ। है जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधु

0: गाना शारदा जी, वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवाया। जो मधुबन खुशबू देता है, यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है।
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको। शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए। कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए। घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में में यकीन रखते हैं वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ,
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर 4-4 घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम

0: नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है, तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें। और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
1: अच्छा।
0: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं, क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग ही रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना हो,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा ये भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
1: और कितना खा रहे हैं।
0: कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना खाना चाहिए, खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारे जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हटके कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल, टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक का,
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
0: जी।
1: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है

0: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
1: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो हैं वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया
3: आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित करेंगी नहीं।
3: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं नहीं करती हैं जल्दी से,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।

0: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
0: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देख कर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
0: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देख कर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
0: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
1: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
0: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

0: रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरे रम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
1: और फिर से अपना काम करना,
2: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
2: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपके आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
2: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है,

0: और आप एक अलग हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए,
1: सीख
0: आप
1: करके
0: पहले
1: जी।
0: सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी,
1: जी
0: मेरा
1: जी जी
0: मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अभी विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हो रहा था। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। शाम के 5 हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर

0: पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखान, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, ससकोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, लारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 5:10 पर आप आनंद ले सकेंगे गज़लों के कार्यक्रम शाम गज़ल का। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है बुजुर्गों से दुर्व्यवहार हमारे समाज और भविष्य के लिए खतरनाक। शासकीय योजना के अंतर्गत आप सुनेंगे विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन।

0: चर्चा का विषय राजमार्ग यात्रा ऐप। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20, शाम 7:00, रात्रि 8:30 पर। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे। कार्यक्रम में आज के बाद का विषय है जैविक खेती में कार्बनिक मल्चिंग की भूमिका और बेहतर उत्पादन के लिए अपनाएं उचित प्रबंधन, यह विषय आज की नसीहत का। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रमों के अनुप्रसारण की शुरुआत होगी। 9:25 पर आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विदेश नीति थीम पर विशेष कार्यक्रम। हमारे केंद्र से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विविध संगीत और आपकी पसंद के फिल्मी गीत बजाए जाएंगे कार्यक्रम अनुरोध में रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम शामी गजल।

0: नूह नकवी की लिखी गज़ल अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की बनाई तर्ज और आवाज़ में। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम शाम गज़ल। अगली गज़ल राजेंद्र मेहता के स्वर और संगीत निर्देशन में है, साथ ही आवाज़ नीना मेहता की है और शायर हैं खतील शिफाई। ये गज़ल आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

ये आवाज़ें थीं आज़म अली मुकर्रर और नमिता बनर्जी की। इनके स्वर में आप सुन रहे थे असद अजमेरी की लिखी गज़ल, और इसे संगतबद्ध किया था आज़म अली मुकर्रम ने। इस गज़ल के साथ ही अब गज़लों का कार्यक्रम शाम गज़ल समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो की तरंगों के साथ आपके रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा हाजिर है लेके आज का

युववाणी प्रोग्राम। सभी श्रोताओं का स्वागत है युववाणी कार्यक्रम में, जो है युवाओं की आवाज, युवाओं के विचारों का मंच। दोस्तों, आज के प्रस्तुति की शुरुआत में आपसे एक छोटी सी याद साझा करना चाहूंगी। याद है वो बचपन जब गर्मियों की छुट्टियों में दादी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थीं और दादा नाना अपने ज़माने के किस्से बताया करते थे। हमें प्यार करना, उंगली पकड़ के टहलने ले जाना, अपनी जेब से चॉकलेट निकाल के देना, या घर से कहीं जाते समय चुपके से पैसे हमें देना कि ये लो इससे मिठाई खा लेना, या उनके साथ बैठ के पुराने गाने सुनना, रेडियो सुनना। बचपन की ये छोटी छोटी यादें आज भी हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और कहीं ना कहीं उन रिश्तों के लिए समय कम होता गया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पार करने में किसी बुजुर्ग को कठिनाई होती है, बैंक या अस्पताल में लंबी कतार में खड़े रहने पे परेशानी होती है, बैंक या हॉस्पिटल्स में लंबी कतार में कई घंटे वे खड़े रहते हैं, या फिर नई तकनीक का इस्तेमाल करने में उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में हमारा छोटा सा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार उन्हें मदद की जगह उपेक्षा और असम्मान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बुजुर्गों से व्यवहार हमेशा हिंसात्मक या शारीरिक नहीं होता। उनकी बातों को अनसुना करना, उनकी भावनाओं का सम्मान ना करना, उन्हें बोझ समझने के साथ महसूस कराना, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता छीन लेना, परिवार के निर्णयों से दूर रखना भी दुर्व्यवहार का ही रूप है। परिणाम ये होता है कि वे बुजुर्ग अकेलापन, मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। अपने ही घर में रहते हुए खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए अच्छी कहीं से नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज तकनीक ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन कई बार दिलों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। हम सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने ही घर के बुजुर्गों से दो बातें करने का टाइम नहीं निकाल पाते, जबकि लिए उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा अपना टाइम और अपनापन होता है। सिर्फ घर के ही नहीं, बल्कि अपने आसपास रहने वाले बुजुर्ग भी बड़े बुजुर्ग में शामिल हैं। किसी अनजान इंसान से आत्मीयता, अपनापन और सहयोग करके उन्हें भी खुश किया जा सकता है। बड़े बुजुर्गों से हालचाल पूछिए, दादी नानी के साथ बैठ के पुरानी यादें सुनिए, या कभी वृद्धा आश्रम में जाके समय बिताने के साथ अपना सहयोग दीजिए। दोस्तों, जीवन एक चक्र है। आज हम जो युवा हैं, कल हम भी बुजुर्ग बनेंगे। ऐसे में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो दिल दुखेगा ही। जो व्यवहार आज हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, वही आने वाली पीढ़ियां हमसे सीखेंगी। सरकार द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन केवल कानून से इस दुर्व्यवहार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनके लिए समाज और परिवार दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये ज़रूरी है कि उनकी ज़रूरतों को हम समझें, उनकी भावनाओं की कद्र करें और उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें और ना ही अकेलापन महसूस होने दें। उन्हें सम्मान और सहारा देना हमारा कर्तव्य भी है और संस्कार भी। कल को वे रहे ना रहें तो हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। इसलिए जब तक घर में, समाज में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कद्र करें और उन्हें ढेर सारा प्यार दें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। आज के क्रम

बेहतर यात्रा का अनुभव कराना ज़रूरी होता है। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये यात्रियों को यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां एक ही जगह पे उपलब्ध कराता है। राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, एम्बुलेंस सेवा, क्रेन सेवा जैसे कई ज़रूरी सेवाओं की जानकारियां आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी सफ़र के दौरान आपको बार बार गाड़ी रोक के लोगों से रास्ता पूछने या जानकारी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इस ऐप की एक खास बात यह भी है, अगर आपको सड़क पे कोई समस्या दिखाई देती है जैसे गड्ढे, टूटी सड़क या अन्य कोई परेशानी, तो आप सीधे ऐप के माध्यम से उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ फोटो और लोकेशन भेजने की भी लाइव सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे संबंधित विभाग तक सूचना जल्दी पहुंचती है और समस्या के समाधान में मदद भी मिलती है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी ये ऐप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में ये ऐप आपको नज़दीकी अस्पताल और सहायता सेवाओं की जानकारी देता है। युवाओं के साथ उन सब के लिए जो रोड ट्रिप और लंबी यात्राओं पर जाते हैं, ऐसे में राजमार्ग यात्रा ऐप जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए निश्चित रूप से आपके फ़ोन में होना चाहिए। आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी चर्चा राजमार्ग यात्रा ऐप पे, और जैसे हमारी आज की बात बड़े बुजुर्गों पे होते दुर्व्यवहार पे थी, उनकी कद्र और सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम शासकीय योजना पे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में लिखा फिल्म आपकी कसम का ये गाना। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आरडी वर्मा ने, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

सभी श्रोता साथियों का स्वागत है शासकीय योजना के क्रम में, जिसमें आज आपको सूचना और जानकारी मिलेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना यानी VBG राम जी के बारे में। आप में से कई श्रोता मनरेगा के बारे में जानते होंगे। साल 2005 में मनरेगा योजना ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बदलते समय के साथ नई जरूरतें भी सामने आई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने VBG राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को मनरेगा के बदले लागू कर रही है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले मनरेगा में यह सीमा सिर्फ 100 दिन थी, यानी अब जरूरतमंद परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का अवसर मिलेगा। ये बदलाव उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। दोस्तों, आगे और बातें आपको बताएंगे VBG राम जी योजना के बारे में। उससे पहले आपको सुनवाते हैं आरती मुखर्जी की आवाज में फिल्म मासूम का ये गाना। शब्द रचना है गुलजार की, धुन बनाई है RD बर्मन ने।

दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार का एक वयस्क सदस्य इसमें पंजीयन करा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी जमा करनी होती है। दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी का पंजीकरण किया जाता है। उसे एक रोजगार पहचान पत्र या जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की इस खास बात ये भी है कि इसमें तकनीक का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाओं से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार के काम कराए जाते हैं। इसमें जल संरक्षण, तालाब निर्माण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क निर्माण, नहरों की मरम्मत, भूमि सुधार, सामुदायिक भवन निर्माण और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। इन कार्यों का फायदा केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव को मिलता है। साथ ही मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। दोस्तों, वीबीजी रामजी योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है महिलाओं की भागीदारी। वे भी इसमें काम करके आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए भी वीबीजी रामजी योजना अवसरों का द्वार खोल देती है। कई बार पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार मिलने में समय लगता है, ऐसे में ये योजना अस्थायी रोजगार और अनुभव दे सकती है, साथ ही अपने गांव के विकास में योगदान देने का अवसर भी देती है। रोजगार की गारंटी, गांव के काम, डिजिटल पारदर्शिता, महिलाओं की भागीदारी और विकास कार्यों पे जोर, ये सभी बातें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी को और खास बनाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी का लिखा फिल्म दो बदन का ये गाना। इस गीत को गाया है आशा ने, संगीत दिया है रवि ने,

दोस्तों, अब वक्त हो गया है युववाणी कार्यक्रम के समापन का। मुलाकात होगी आप सब से युववाणी के अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल और सुनते रहें FM रायगढ़। मुझे अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त

0: माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 6:05 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे कल के प्रसारण के कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय 6:10 का। 6:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा। रामचरितमानस भाग 44 का प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:40 पर। 6:50 पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम देशगान। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:05 पर। 7:35 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। इसमें सूचना का विषय है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम बाजे मांदर का आनंद लीजिएगा 7:45 पर। 8:30 पर समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रमों के अनुप्रसारण की शुरुआत होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 9:55 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित की जाएगी सुबह 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। 11 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे, इसे आप सुनेंगे शाम 5 बजे तक। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट झलकी, आप सुनेंगे हमारे केंद्र से शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा योग से रहें स्वस्थ और निरोग। क्रम होगा करियर एडवाइस। चर्चा का विषय सह अस्तित्व का हाथ बढ़ाएं, जीव जंतुओं संग दुनिया सजाएं। चर्चा का विषय है मादक पदार्थों के सेवन का दुष्प्रभाव। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20, शाम 7 बजे, रात्रि 8:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा कृषक अपनी कंपनी स्वयं बनाएं FPO से, और बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार, यह विषय आज की नसीहत का। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रमों के अनुप्रसारण की शुरुआत होगी। 9:55 पर आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आतंकवाद थीम पर विशेष कार्यक्रम। हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे विविध संगीत, और 10:30 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून दिल की आरती
5: सुरीली संदली।
3: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:10 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा।
9: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू 17 जुलाई तक चलैया सत्र में 5 बैठका होगी। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी, और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुली, 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होगी। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा है ए बारे में अधिसूचना जारी कर दे है। 17 जुलाई तक चलैया ए सत्र में कुल 5 बैठका होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज के संगे संग आने सरकारी काम पूरा करे जाही। भारत है पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष ल खत्म करे बर अमेरिका और ईरान के बीच हो समझौता के स्वागत करे है। इस संघर्ष ले विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट खड़े हो गए रही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहन कि यह समझौता ले क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहन है कि देश के मध्यम वर्ग है राष्ट्र निर्माण में बड़का योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहन कि पाछू 1 दशक में सरकार है आम लोगन मन के जिंदगी ल सुधारे बर बढ़िया बुनियादी ढांचा कम खर्चा में स्वास्थ्य सेवा, बने ढंग ले पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई वाले शहर के संगे संग सार्वजनिक सेवा मन ऊपर ध्यान दे हवे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग है घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। ऐसने बिजली दर में 6.23% की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि पंप मन में बिजली के भाव में प्रति यूनिट 40 पैसा की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन ल ऊर्जा प्रभार में दे जाए छूट ल 30% ले बढ़ा के 40% कर दे गए है। बिजली के बढ़े दर अवैया 1 जुलाई ले प्रभावी होगी। गर्मी के छुट्टी के बाद काली ले प्रदेश के जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद खुल जही। इस दौरान हुए यह कार्यक्रम में शाला प्रवेश उत्सव पर स्कूल प्रबंधन है पूरा तैयारी कर ली है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल अवैया नवा लड़का मल्ला तिलक लगा के स्वागत करे जाही और संगे संग छात्र मल्ला पुस्तक ड्रेस और साइकिल दे जाही। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग है प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राज्य गीत के संगे संग आने आने गतिविधि ल जरूरी रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे है। मुख्यमंत्री है प्रदेश के जम्मो जनप्रतिनिधि मन ल चिट्ठी लिख के 16 ले 27 जून तक होइया शाला प्रवेश उत्सव में अपन भागीदारी दे के आह्वान करे है। मुख्यमंत्री है कहिन है कि शिक्षा है कोनो भी समाज और राष्ट्र के विकास के आधार है। उमन मंत्री सांसद विधायक जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष महापौर के संगे संग नगरी निकाय मन के जनप्रतिनिधि मन ले विनती करें कि अपन क्षेत्र के स्कूल में जाके ये अभियान में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गर्मी के छुट्टी खत्म होने के बाद आज ले खंडपीठ और एकल पीठ मन में सुनवाई एक घाव फिर शुरू हो गई। आज ले वकील मन है अदालत कक्ष में आके अपन पक्ष रखिन। जानबा के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी 18 मई ले शुरू हो रही। इस दौरान सिर्फ जरूरी मामला मन के सुनवाई भर हरेक हफ्ता विशेष अवकाशकालीन पीठ बनाई गई रही। अवैया मानसून ल देखत आज ले छत्तीसगढ़ के जम्मू टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मन ल पर्यटक मन भर बंद कर दे गए है। ये जम्मू संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रही। वन विभाग के मुताबिक पर्यटक मन भर अब जंगल के दरवाजा 2 अक्टूबर ले खोले जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला पर दोबारा होवत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एला NTA के वेबसाइट neet.nta.nic.in ले डाउनलोड करे जा सकते। परीक्षा 21 जून के मझनिया 2 बजे ले शुरू होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
10: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
9: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार खोती। पशुपालन ल बढ़ावा देबर राज्य सरकार ह बस्तर के हर परिवार ल दुदुठिन गाय या भैंस दीही। ए घोषणा काली रायपुर में होए एक ठिन पुस्तक के विमोचन समारोह के मौका में मुख्यमंत्री ह कहिन। उमन कहिन कि नक्सलवाद के सेती बस्तर के लोगन मन ह विकास ले दुरिया रहिस। एखरे सेती अब तेजी ले विकास कम करे जाही। एखर बर रोड मैप तैयार कर ले गे हे। मुख्यमंत्री है बताइन कि गांव गांव में राशन दुकान खोले जाते और सुरक्षा शिविर मन ल सेवा डेरा के रूप में विकसित करे जाते। कार्यक्रम के ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो शामिल होइन। दुर्ग जिला के पुलिस लाइन सभागार में हो एक ठिन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति कोटि ले शौर्य चक्र ले सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नागरिक अभिनंदन करेगी। ए मौका में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है कहिन कि ये दोनों अधिकारी मन कठिन स्थिति में साहस धैर्य के परिचय देके छत्तीसगढ़ पुलिस के गौरव बढ़ाया है। उमन बताइन कि शौर्य चक्र शांतिकाल में दे जाए देश के तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ए बेरा कांकेर जिला के पखांजूर थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट है 40 ठिन सफल नक्सल मुठभेड़ मन में शामिल रहीन। तो उन्हें भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख है 25 ठिन नक्सल विरोधी अभियान में अपन भूमिका निभाइन। आयुष मंत्रालय ह आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के होवैया कार्यक्रम पर औपचारिक कार्यक्रम मन के शुभारंभ करिन। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ह नई दिल्ली में संवाददाता मन ला बतइन कि प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में कोलकाता के रेड रोड में करे जाही। उमन बतइन कि ये मौका में 45 मिनट के योग प्रोटोकॉल रखे जाही। इसो के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। केंद्र के मोदी सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा डहार ले पिंडरा नगर के मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। उन्हें शक्ति जिला पंचायत कार्यालय में घलो मोदी सरकार के 12 साल पूरा होए ऊपर प्रदर्शनी रखे गए है। रायपुर में होए 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन बढ़िया प्रदर्शन करीन। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में होए 3 दिन के प्रतियोगिता के आखिरी दिन काली छत्तीसगढ़ हा 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 ठीन कांस्य पदक के संग 4 ठीन पदक जीतीन। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ला कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 ठीन कांस्य पदक मिलीस। पूरा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश हा पहली जगह बनाईस तो उन्हें दूसर स्थान में केरल और ओडिशा ला तीसर स्थान मिलीस। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्य ले करीबन 800 खिलाड़ी मन भाग लीन। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचे में थोड़ी समय लग सकते। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि बिहार ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक ठिन द्रोणिका बने हैं। एकर प्रभाव ले कोनो कोनो जगह में गरज चमक के संग वर्षा हो सकती। अब थोरकुन समाचार सार में। दुर्ग जिला के अग्रसेन चौक और ओकर तीर्थखार के रद्दा में अवैध रूप ले चलाए जात ठेला खोमचा वाले मल्ल प्रशासन डहार ले हटाए के कार्रवाई करेगी। कबीरधाम जिला के दसरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल के संयुक्त टीम है बिजली वाले जिनिस के गबन और चोरी के आरोप में 5 जिन आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे है। और कोंडागांव जिला में पटवारी भर्ती में चयन कराए के झांसा देवैया एक जिन मनखे ले करीबन 6.5 लाख रुपया के ठगी करे के मामला आगू आए है। इस मामला में पुलिस एक जिन युवक ल गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू 17 जुलाई तक चले या सत्र में हो ही 5 बैठक। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल ही 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
3: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में सुर संगम फिल्म का ये गीत जिसे वसंत देव ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?

0: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: सितमगर फिल्म के इस दो गाने में आवाज़ थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। मजरूह का लिखा ये गीत था और राहुल देव बर्मन ने इसे अपने संगीत से सजाया था। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत तेरी कसम फिल्म का है। अमित कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है। ये गीत आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वामी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, अमित खन्ना का लिखा हुआ, राजेश रोशन की बनाई धुन पर। और इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 6:45 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुद्धू।
8: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
12: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू

0: तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों, बस्तर और सरगुजा सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की छूट को जारी रखा गया है। देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लिए जाने वाले अधिभार को अब प्रति माह के बजाय प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। वहीं अग्रिम भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली 0.25% की छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में कुल

0: पांच बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकल पीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ताओं ने अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। कल रायपुर में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया, अब बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सलियों ने अपने जिन कैडर की नसबंदी कर दी थी उनकी नसबंदी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में यह संभव नहीं हो पाएगा ऐसे दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने भी संबोधित किया। मॉनसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जिन संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा उनमें अचानकमार, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। वन विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से इन सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के संवेदनशील गांवों में भी यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के 36 विकास खंडों के 697 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 2476 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 16,20,000 लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मॉनसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उत्तर छत्तीसगढ़ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आगामी 3 दिन तक लगभग 1 से लेके 2 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। मानसून का आगामी 4 से लेके 5 दिन का अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक और उसके आसपास की सड़क में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले खोमचों को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की दशरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत सामग्री के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। और कोंडागांव जिले में पटवारी भर्ती में चयन कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और कार्यक्रम के आरंभ में अनवर के स्वर में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये इश्क नहीं आसा फिल्म से। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: लता मंगेशकर के स्वर में स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। निदा फाजली का लिखा हुआ उषा खन्ना के संगीत पर आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत है सौतन फिल्म से, लता मंगेशकर की ही आवाज़ है। सावन कुमार का लिखा गीत और उषा खन्ना का संगीत आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,

0: देश की सुरीली धड़कन,
1: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
0: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी इस गीत में। सौतन फिल्म का ये गीत था। इसे लिखा सावन कुमार ने और संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने। सौतन फिल्म के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में चौपाल सुनिया जमो संगी संगवारी लयका सियान जवान किसान मितान सब बोला हावे राम राम जय जुहार। और मैं हवा आप मन के संगवारी राम विलास पटेल एक पैताओ झोंका राम राम जय जुहार। तो संगियो कैसे हवा? बढ़िया हुई है जी भैया, हो देखा काहे अब तो बढ़िया दिन आते है। अब भैया हर कहा थे कैसे बढ़िया दिन आते कहा था, देखा काली ले लयकावन की स्कूल खुला थे और 15 जून के बाद यानी 16 जून ले संगवारी हो हमार मानसून के सक्रियता भी बढ़ जाते। अब रजस्थला भी मानते हैं कई जगह में कुछ विशेष दिन में माटी ला नहीं कोड़े और ऐसे जो समय रहते वो समय में कई जगह में संगवारी हो देखा था कि आज भी कई जगह कई क्षेत्र में पानी बरसे है। माने ये है कि संगवारी हो कि मानसून अब धीरे धीरे करके अवैया हावे, समाचार में सुनत रहें 2-3 दिन के बाद अवैया है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र में संगवारी हो वर्षा पानी हुआ थे तो कहा थे कि अब तैयार हो जावा तुमन, यानी तैयार हो जावा राफा गैती ला साज लेवा नांगर कोपर ला तैयार कर लेवा और डोली खेत खार के पार मेड़ ला ठिन्ना करके साफ सुथरा करके अवैया खरीफ फसल के बुआई पर लग जावा जुट जावा, यानी लयका मन के पढ़ाई और खरीफ के शुरुआत यानी काली ले होत जात, यानी संगवारी 15 जून के बाद खरीफ के शुरुआत हो जाते। तो कहे के मतलब ये है संगवारी हो कि 2-3 ठी चीज मतलब तो चेत करना पड़ी। सबले पहली तो अभी हमन अतका ज़्यादा घाम में रहन है, गर्मी में रहन कहा, अब कुछ दिन में हमन वर्षा में जाबो तो अचानक गर्मी ले वर्षा में जाबो तो देह कान नठाए के समस्या हो सकत है, जूझना पड़ सकत है ओकर ले। तो एकर बार आप मतलब बचाव के उपाय ला अपनाना पड़ी, छाता है ओला साजा तू ना करके रखना पड़ी, जो हमन रेनकोट पहनथन प्लास्टिक के जोला पहिरथन तेला भी रखना पड़ी और स्कूल भी खुली लयका मन के तो अहू मन के जो बैग है कापी पुस्तक फोल्टीन जो भी है एला तैयार करना पड़ी और टिफिन में बढ़िया मस्त संगवारियों का स्वादिष्ट का करिए ती होती हो जाते जी भर पलट जाते स्वादिष्ट कहें तो स्वादिष्ट यानी पोषण आहार भी हमला ओमला टिफिन में देना पड़ी और कई ठन सरकारी स्कूल है वहाँ तो मध्यान्ह भोजन भी लागू रहते जहाँ दिए भी जाते। तो संगवारियों ये सब के अलावा अगर हमन किसान हवन या आम नागरिक हवन या कहीं काम करे जाथन तो अपन के गाड़ी के जो डिक्की रहते तेमा रेनकोट ला भी आप रखना पड़े धीरे धीरे और वर्षा पानी कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। संग में हेलमेट ला भी रखना पड़ी, हवा पानी गर्रा के संग में गिरते पानी हर कई जगह में गिरीस भी है, हमन आज देखा रहे कई क्षेत्र में गिरे के समाचार भी मिले से। तो संगी वो ये बात है कि अब धीरे धीरे आप मतलब सजग होके सचेत होके लयका मन के ऊपर भी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान रखना पड़ी। पालक बालक शिक्षक कहते संगवारी तीनों के संगम ले लयका के सर्वांगीण विकास होते। तो गुरु जी मन तो स्कूल में अपन काम ला कर ही और पालक हवा तो आप मल्ला भी लयका का पढ़िस लिखिस तेला ध्यान रखना पड़ी और सरकारी योजना के तहत जो लाभ है लयका मल्ला मिलते। तो संगवारी आप मन अपन के लयका मल्ला बढ़िया से स्कूल भेजा और स्कूल भेज के संगवारी हो मन के जिनगानी ला गढ़ाओ। तो संगीव देखा चर्चा हमारे बहुत सारा है कि आज के बाद के जो विषय है संगियों देखा खेती में हमन लगातार आता दूरा रासायनिक खाद उर्वरक की उपयोग करथन तो एकर से का होते माटी हर कड़ा होते कठोर होते। पहली नांगर ला जोताई होए संगवारी हो बैला दुठन मा जुड़ा ला फान दन और नांगर ला बहाना ऐसे जो कहते हैं संगवारी रस्सी से वाला करके फांस लगा के करन ना और नांगर ला चलान तो पाछू पाछू जावत जान माटी निसरत जाए तो गोड़ मा वर राखन पैर ला दबान माटी तो वर पूरा बिला जाए। मतलब ये है कि माटी कठोर नहीं रही से बढ़िया उसास रही से उपजाऊ रही से गोबर खातू पात रही से भुइया हर। अब ये सब हर नंदा गे, पहली हमन हाथ में धान के कटाई करत रहन और हार्वेस्टर ट्रैक्टर एमन के कमती उपयोग रही से पहली जो बैलागाड़ी रही से बैलागाड़ी से हमन जो भी कटाई करन वाला लेके आन। तो आशा ये है मोरे सब उदाहरण देहे के कारण ये है संगी हो कि अब माटी के ऊपर भी दबाव बढ़त जाते एकर से भी हो जाते और रासायनिक खातु बढ़त जाते। आजकल हमन देखत हन गाय गरुआ रखना नहीं चाहते कोन्हो जी, अब बिहनिया ले गोरस ले पीना चाहते हैं बढ़िया। तो संगी हो ये बात है कि गाय ला पालन करना पड़ी और गोरस उत्पादन भी करना पड़ी, गोरस के उपयोग भी करना पड़ी और गोरस के हमन
प्रोडक्शन यानी प्रसंस्करण भी कर सकत हन, तो कुल मिला के बहुत सारा चीज कर सकत हन। ये सब उदाहरण रहे के उद्देश्य ये है कि आज के हमारे जो चर्चा के विषय है कि जैविक खेती में कार्बनिक मल्चिंग के भूमिका का हो सकत है। तो संगियों, जो लगातार भूमि में दबाव बढ़ते, कठोर होते, कड़ा हो जाते, माटी ला नमी ला अवशोषित नहीं कर पाते, नमी हर बन के नहीं रह पाते, ऐसने में हमन नमी ला बढ़िया बरकरार रखे बर, नमी ला संरक्षित रखे बर हमन मल्चिंग ला काम में ला सकत हन। मल्चिंग में का करसन संगवारी, तीर्थ तखार के जो उपलब्ध संसाधन है प्राकृतिक रूप ले, चाहे पैरा हो, चाहे सूखा पत्ता जो भी हो, या घास फूस हो, या अवशेष ला हमन डाल देते हैं जी। पहले हमारे गाँव घर में हमन देखत रहन कि कोचाई ल जगाए, हरदी ल जगाए, जिमीकांद ल जगाए, तो ओकर बाद उमा दार पान ल तोप दें, परसा के पान हो या जो पैरा है ये सब ल तोप दें, तो का हो संगवारी वो अंकुरित भी हो जाए और घास पूसर नहीं जामे जी, और कुछ ऐसे अवशेष रहते जोनर की उमा सड़ के खाद बन जाते। तो ऐसे हमन मल्चिंग के अगर उपयोग करबो तो संगवारी हो जो मल्च रही वह सड़ के ह्यूमस के रूप में तब्दील हो जाए, एकर से भी हमला लाभ होही, संग मन नमी हर बने रही। जैसे तोप ढाप के राखथन, जैसे ढलाई करथन, तो कई क्षेत्र में देखथन कि हमन सन पट के बोरा ला भीगा देथन। तो ऐसे ही अगर हमन नमी संरक्षण करना चाहथन तो कार्बनिक मल्चिंग हर काफ़ी लाभप्रद होते, काबर की धूप के प्रभाव ला सीधा माटी में जान नहीं दे, यानी माटी धूप के प्रभाव ले अतका ज़्यादा नहीं तपे। तो ये सब ला हमें ध्यान में रखना पड़ी, और फसल जो भी हम लेथन तो हमें सिंचाई भी कम करना पड़ी। सूक्ष्मजीव जो है जैसे केचुआ है या मित्र जीव है, कीट है, ये मन के संख्या भी पनपते। तो ऐसने में संगवारी हो का है कि जब केचुआ पनपही तो अपन काम ला जारी राखी, तो एकर से का है केचुआ के बढ़िया संगवारी हो हमला भूमि में उर्वरता मिली। संग में हम देखा थन कि आजकल लगातार हम देखा थन कि भूया में सूक्ष्म जीव या केचुआ मन के संख्या घटत जात है, ऐसने में ये सब चीज़ बढ़िया कारगर हो सकत है। पहली कार्य से गाँव घर में गोबर के गड्ढा रही से, खातू के गड्ढा रही से है ना, तो संगवारी वहाँ पहली केचुआ मिले, कई जन तो वहाँ केचुआ ला उपयोग करके मछली ला फंसाएं गेरी में, वो सब रही से पहली जमाना के समय। तो आजकल केचुआ मन भी नहीं मिलते हैं, एक बार काबर की तापमान बढ़ के मल तो

0: कठिन स्थिति में हमला मल्चिंग भी करना पड़ी और वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग करना पड़ी, केचुआला पालन करना पड़ी। कई किसान ऐसे हावे जोन मन की आज भी केचुआला पालन करते हैं। तो संगी हो, ये हावे कि हमन ये सब ल जानते हुए का बर न हमन कार्बनिक मल्चिंग के डहर आगू बढ़ी। माटी के अपरदन ल रोकते है, जैसे क्या होते सीधा पानी गिरते या धूप होते तो ओकर प्रभाव जो कहना चाहिए माटी है ओकर ऊपर या पौधा है ओकर ऊपर एकदम से नहीं पड़े, धीरे से पड़ते, हल्का से पड़ते। एकर ताज़ा उदाहरण आप मन संगवारी हो, धनिया लगा रहा था, धनिया के बुआई कर रहा था तो ओकर ऊपर माँ पैरा ला देता तो कैसे वह सहारा करते फसल ला। तो ऐसने अनुमान लगा कि हमन अगर करथन तो संगवारी हो जैविक खेती में बहुत बढ़िया लाभदायक हो सकते है हमार मल्चिंग हर जैविक मल्चिंग के काम हर। तो आप काला करिए पैराला कर सकत है जी, धान के पैराला कर सकत है, गेहूं के भूसा है तेला कर सकत है, सूखा पान पतई रहते तेला कर सकत है, गन्ना के खोई जोड़ रहे थे तेला कर सकत है, और हरा खाद हरी खाद जो ला कहते हैं संगवारी और ढेचा सनई ये मन भी काफ़ी लाभप्रद रहे थे। कुछ जैसे हरी खाद रहते जैसे उड़ीद मूंग रहते जो ला कि हमन उपयोग कर डाल रहन, ओकर बाद बचे रहते डेटा वाला कई जन जरवा देते तो वाला भी हम मल्च के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया तरीका है और ये तरीका ला हमला अपनाना पड़े संगवारी हो, तभी जाके हमार उन्नति और प्रगति संभव हो ही। तो संगियो आज के हमार कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न हावे, खेती किसानी में कार्बनिक मल्चिंग के का लाभ होते, यानी खेती किसानी में मल्चिंग के का लाभ होते इला आप मन बताहा। कार्बनिक मल्चिंग जैसे कि हमन घास फूस है या पैरा है इला डालते हैं, तो मल्चिंग तो एक तो प्लास्टिक के भी होते, तो हम लोग प्लास्टिक के अभी हमन बात नहीं कर रहे हैं, हमन बात कर रहे हैं कि जो कार्बनिक हमार तीर तखार में जो मिलते मल्च करे बर ओला अगर हमन डालथन करथन तो का लाभ हो सकत है, एकर फायदा का होते आप मन लिख के भेजिया। संगियो देखा बातचीत तो चलते रही लेकिन हमार किसान मन के जुबानी भी हमन उनके कहानी लब से सुनना पड़ते। ग्राम विकास खंड लैलुंगा के कृषक हावे बलार साय, इवन ग्रीष्मकालीन रागी की उन्नत खेती करके बढ़िया लाभ ला कमाते हैं और लाभ अर्जन करके संगवारी वो कैसे फसल विविधीकरण करके कैसे आमदनी ला बढ़ाते हैं, आवा सुनबो बलार साय की जुबानी ओमन के कहानी। संगवारी हो राम राम जय जोहार, आकाशवाणी रायगढ़ की टीम हमेशा पहुंचते सफल और प्रगतिशील किसान मन के डहार। ऐसने क्रम में संगवारी हो आज हमन पहुंचे हैं जिला मुख्यालय ले लगभग 85-90 किलोमीटर के धुरिया में बसे एक ऐसे क्षेत्र जहां संगवारी हो रागी कोदो कुटकी ज्वार बाजरा और संग में यहाँ के जावा फूल चावल के जावा फूल धान के उत्पादन के खेती खातिर ये क्षेत्र ले जाना जाते। ऐसने में हमारे बीच उपस्थित है किसान जोन मन की ग्रीष्म काल में रागी के सफल खेती करी है और अवैया समय में भी खेती करी और संग में जावा फूल के भी खेती बढ़िया तरीका से करते हैं। ऐसे किसान से हमन भेंट करा था, सबले पहले तो किसान भाई ला राम राम जय जुहार।
1: राम राम जय जुहार।
0: तो संगवारी आप मन के नाम बताइए जी।
1: बलार साहब भैया।
0: बलार साहब जी है ना, उम्र कतका हो गए?
1: 60
0: साल हो गए। और पढ़े कतका हुआ?
1: तीसरी क्लास,
0: पहली के तीसरी क्लास है ना, लेकिन हिसाब किताब जानना चाहिए, पढ़े लिखे तो होते रहते लेकिन आप मन तीसरी पढ़े, लेकिन एक ऐसे चीज के उत्पादन करा था आप मन के यहाँ देखा था कि रागी के उत्पादन का आप मन के पहले आप मन के पुरखा मन ये चीज ला करत रही ने?
1: पहली तो करत रही साहब,
0: करत रही ने। आप मन कर रहे पहली खेती?
1: पहली करत रहे माने वो टिकरा धान बुनन धरी धरी में दहन जी पर दिन ले छोड़े रहे,
0: छोड़ दे रहा,
1: यह दो बार हो इसने रागी के खेती ई साहब हमारे इन्हें दिन ले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: यह तो, दूसरा बार है।
0: हाँ हाँ, तो बलार साहब जी का खेती किसानी करता आप मन?
1: अभी अभी तो हमन बरसात में धान के ये फूल के भी आधा थोड़ा करथन, सब में तो नहीं करन।
0: हाँ हाँ,
1: एक डेढ़ एकड़ में करथन ये फूल के भी।
0: अच्छा,
1: अभी मोटा धान लगा था जी बाकी।
0: अच्छा अच्छा, जद का भी हो संभव थे जावा फूल लगा था, कुछ मा मोटा धान लगा था। और अभी आप मन के खेत में हमन देखा था, अभी आप मन के खेत में हमन देखा था संगवारी की रागी के फसल लहलात है, तो ये रागी की खेती कैसे कर है आप मन, कैसे विचार है की रागी की खेती करबो करके?
1: रागी के खेती तो बढ़िया लगी साहब, रागी खेती अच्छा है करे के ओला सौंक करे बढ़िया है। हमन जोन घाम दिन में सूखा लगाए रहे हैं।
0: हाँ हाँ,
1: गार तीर दे हैं।
0: हाँ हाँ,
1: और सूखा लगा के पानी पला दे हैं साहब।
0: सूखा पौधा ला लगा रहा?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, ओकर थरहा तैयार कर रहा?
1: हाँ, थरहा तैयार करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: सूखा गाड़े रहे।
0: तो थरहा तैयार कैसे कर रहा?
1: थरहा जो सुखज करे रहे हैं।
0: हाँ, सूखा कर रहा, बीज लबो दे रहा?
1: बीज लबोन के ऊपर में खतु दे दे हैं।

0: अच्छा अच्छा, फिर पानी उमर
1: पानी, हाँ, पानी दे दे।
0: तो कतका दिन में पौधा तैयार हो जाते रोपाई के लायक?
1: ओहर 20-25 दिन में हो जाते साहब, लेकिन हम अल्लाह थोरकुन घरुआ खाए दे रही।
0: अच्छा अच्छा,
1: 20-25
0: हाँ हाँ, फिर और लोहिस तो फिर ले हाँ। तो, अच्छा अच्छा, चल आप कैसे करिए होते, ऐसे तो हानि लाभ चलत रहते। बढ़िया बात है की रागी के जो पौधा है आप मन कैसे दूरी में लगा रहे?
1: हम वाला थोरकुन एक एक बीता के ऊपर
0: दूरिया में
1: हो, एक एक पीच मान के चलो।
0: अच्छा,
1: जगा रहे हैं।
0: अच्छा, तो मुख्य रूप से मैं खाद वाद जो लागते एक कैसे प्रबंधन करता आप?
1: हमन पहली खातू छींच देहन साहब।
0: अच्छा, खातू छींच दा।
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: अब खातू ला छींच के हमन रोपाई करे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीजा भाता कहाँ से मिलिस?
1: बीजा बाजा जो हमार साहब मन दे रही।
0: अच्छा, कौन से विभाग से मिले रही से?
1: कृषि ऑफिस के तो रही साहब मन।
0: कृषि विभाग से मिले?
1: हाँ, कृषि विभाग के।
0: अच्छा अच्छा, तो कृषि विभाग के साहब भी हमारे बीच उपस्थित है।
1: हाँ,
0: तो अहू मन के माध्यम से जानबो की का सहायता किसान मतलब मिली से और कैसे विभाग जो है सहायता करते है ना?
1: माने सहायता तो मोला बहुत दिन हमार साहब मन करी। अच्छा, करते अच्छा। करते आते हैं कोहो।
0: अच्छा अच्छा,
1: माने कि पहली भी हमारी साहब हरई से
0: हाँ।
1: तो पहली खेती करत रहे तो हमला वो खेती करन तो नांगर जोताई के भी मिले।
0: हाँ हाँ,
1: पैसा
0: हाँ
1: वो समय मिलत रही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तहन अभी रागी जोन देस तेहू में बीजा हमला फ्री मिलीस।
0: अच्छा,
1: तो लगायन खतू बिसायन ओकर ओहू पैसा मिली साहब।
0: अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो शासन प्रशासन के पूरा सहयोग आप मतलब मिलत है?
1: मिलत है।
0: और विस्तृत रूप में हम जाबो कि कैसे सहयोग सरकार करत है एकर बारे में हमारे बीच में उपस्थित है लोभन साह सारथी जी मन हावे, कृषि विकास अधिकारी हावे, ओमन से जानबो। सर, सबले पहले तो राम राम जय जोहर।
2: राम राम जय जोहर सर।
0: आप मन के क्षेत्र लाए तो बता दें कि कृषि विभाग के डहाले भी बढ़िया सहयोग मिलत है, तो रागी की खेती के ऊपर का सहयोग मिले रही से किसान मन ला, कैसे एरिया के विस्तार कर रहे हैं एक बारे में बताइए।
2: जिला प्रशासन रायगढ़ पहले से ही कार्य योजना बना के रखे थे, इसके लिए क्षेत्र के किसान रागी की फसल पर मदद करना है। और एक बार सबसे पहले तो किसान मन ला दिसंबर महीना में ये मन ला भ्रमण कराए गए रही बरगढ़।
0: अच्छा,
2: ये मन ला पहले रागी की फसल ला दिखाए गई और खेती के गुण सीख के हमारे लहलुंगा के किसान मन फिर वहाँ पूरा खर्चा प्रशासन के तरफ से दिया गया।
0: अच्छा,
2: ओकर बाद किसान मन ला प्रदर्शन दिया कि यहाँ पर टारगेट बहुत ज्यादा रही 55 एकड़ के टारगेट रही तरह, लेकिन सिंचाई के थोड़ा सा पूर्ति नहीं हो पाए के कारण में अभी ग्रीष्मकालीन में किसान हमार 25 एकड़ मेला लगा रहे हैं।
0: अच्छा,
2: और खरीफ में 15 एकड़ में लगा रहे हैं।
0: अच्छा,
2: मिला के 40 एकड़ में अभी तक जिला प्रशासन रागी की खेती पर लहलुंगा विकास करके किसान मदद कर चुकी से।
0: अच्छा अच्छा,
2: और ये मदद में एक तरह से हमारा भ्रमण में भी रही, दूसरा एक खेती के समय में रागी के एक विशेषज्ञ आ रहे हैं, मतलब विधिवत रागी के नर्सरी कैसे डालना है, रागी की रोपाई कैसे करना है, ये सब के बारे में जानकारी देने जिला प्रशासन डीएमएफ मद से हिमल नगद राशि भी हमन के खाता में दी से लगभग 10,850 रुपया। उसके बाद हिमल कुटाई करी के कृषि यंत्र भी है
0: 10,850 एकड़ पाँच
2: नगद डीबीटी करिश्ना है उनके खाता में।
0: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, उसके बाद हिमल बीज निःशुल्क दिन है, एक कृषि यंत्र है कुटाई करे पर उसके बाद निःशुल्क है, निःशुल्क में प्रशिक्षण है, निःशुल्क में भ्रमण है।
0: अच्छा,
2: इस तरह से जिला प्रशासन लहलुंगा के किसान मतलब रागी की खेती ग्रीष्मकालीन में मदद करी सर
0: जी।
2: और एक बहुत अच्छा परिणाम है कि आप खुद अभी आए हो यहाँ तो आप मतलब डायरेक्ट में खेत में ले आने हो, खेत में किसान की फसल खड़ी से है ना, तो ये आप मन देख सकते हो।
0: तो एक जैसे कटाई के बाद एक बिक्री पर का व्यवस्था?
2: बिक्रय की व्यवस्था चूंकि हमारे किसान हमन जागरूक करत हन कि ग्रीष्मकालीन में यदि आप मन रागी की खेती ले करत तो इला बीज उत्पादन कार्यक्रम में हमने एक पंजीयन करवा दे रहे हैं बीज निगम रायगढ़ में, तो समर्थन मूल्य से अधिक कीमत में बीज उत्पादन भरना ये बीज निगम इला क्रय कर ली। हाँ, तो एक हमन पहले से तैयारी में रहे किसान मन के।
0: अच्छा,
2: तो मतलब मोला लगता है कि समस्या नहीं आए बिक्रय में। और दूसरा लगातार ये रागी एक सुपर फूड है सर।
0: हाँ,
2: और सुपर फूड है तो एक जानकारी भी आम जनता ला आम ग्रामीण रहे और खाए पर भी एकर हम जनता इला खाए पर भी क्रय कर लेते हैं किसान मन ले डायरेक्ट 50 रुपये ग्रेड में तो अभी खरीदते हैं। हमारे लहलुंगा के किसान मन का रागी के उत्पाद है जैविक है पूरा ऑर्गेनिक है, किसान गोबर के उपयोग करके कर खेती ले करते हैं, तो लहलुंगा के माटी के जो उपज रहते हैं कीमत अच्छा रहते है।
0: अच्छा अच्छा,
2: और आप मन जो अभी किसान है बलार सा है आप मन बात करे हुए मन मन खरीफ में जवा फूल लगते हैं।
0: अच्छा,
2: और हाथों हाथ मन के जवा फूल नसर बिक जाते हैं, बिक जाते हैं, मतलब बिक्रय करे में कोई दिक्कत नहीं है
0: जी।
2: और अभी वर्तमान में ये जून के महीना चला थे और खेती के समय

0: जिला प्रशासन किसान मन के हित में जो समिति है वो बीज के भंडारण करवा दी से, उर्वरक के भंडारण हो चुकी से, लेकिन हमन पिछले बार से बार टेढ़ा हमारे किसान मन जो
1: अच्छा अच्छा जी चलो बहुत बढ़िया बात बताओ आप मन लोगन साथ सारथी जी आप मन जानकारी साझा करे कर बोल आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद सर।
1: तो बलार साहब जी ये बताया जैसे साहब अभी बताए इनकी बढ़िया शासन प्रशासन के डाले सहयोग मिले थे का आप मतलब अगर पूरा भरपूर लाभ मिला थे।
2: हाँ मिला थे जी।
1: अच्छा कैसे बेचता आप मन जावा फूल के
2: जे फूल ला तो हम अभी 100 रुपया किलो बेचा था
1: बीज ला और चावल ला
2: 150।
1: अच्छा अच्छा तो ये बताया साहब जी की ये जो खेती किसानी के काम है इसमें शासन प्रशासन के बढ़िया सहयोग मिला थे का लागत है आप मतलब खेती किसानी करे में पहली और अभी के खेती में।
2: अभी के खेती खर्चा हर तो उघानी के का है कि अभी भूति तो ज्यादा हो गई साहब।
1: हाँ हाँ
2: रेट है।
1: हाँ हाँ
2: वो अनुसार से अब खर्चा भी ज्यादा भी आते। हाँ। लेकिन हमारा रेट में खबर हो जाते साहब।
1: अच्छा अच्छा कीमत मिल जाते हो उपज के तो भूति हर समझा बराबर बैठ जाते कहे के मतलब का
2: तो? हम ले लूंगा बहला मैंने साहब।
1: हाँ।
2: एक बार जगह जो दो वो हाँ। खर्चा हो जो
1: हाँ हाँ।
2: तहन राखड़ फाखड़ सार नहीं लगे।
1: अच्छा, अच्छा अच्छा
2: कुछ नहीं लगे।
1: अच्छा
2: माने जगह ही खर्चा आते बस।
1: अच्छा अच्छा
2: एक बार रोपे हो जो साहब हाँ ते फूल खेती में कम नहीं हो।
1: तो रागी ले कतका एरिया में लगा है दिखा देते हर
2: यार अब हमन 1 एकड़ के हिसाब में लगा है साहब।
1: 1 एकड़ के हिसाब से
2: हाँ।
1: चला बढ़िया बात। एक बाद में का फसल लिया
2: इमे तो ही बाद धान लेबो।
1: अच्छा अच्छा
2: इमे जे फूल लगाबो कहत हन।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो चला बढ़िया बात है साहब जी की आप मन रागी के खेती करा था संग में जावा फूल के खेती करना चाहा था हाँ। और कुल मिला के देखा जाए तो आप मन ऐसे चीज मन के चयन करा था खेती किसानी में जेकर मांग हमेशा बरकरार है।
2: जे फूल में जो साहब
1: हाँ
2: अभी ले लूंगा मैं
1: हाँ
2: पहला नंबर जे फूल में करती।
1: अच्छा अच्छा वाह वाह बहुत बढ़िया।
2: काबर जो हमार जो 5-6 एकड़ है
1: हाँ हाँ
2: ता खेती हम दूसर के अभी लेके करबो जो
1: हाँ
2: ते फूलेज करते हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: और उसने बहलाए ने साहब
1: हाँ हाँ
2: एक बार रोपे हो राखर तो नाम नहीं दे।
1: अच्छा अच्छा
2: राखड़
1: हाँ
2: सिर्फ वहाँ खातु भी नहीं लगे सिर्फ जोते खर्चा है सर।
1: अच्छा बिना राखड़ खातु
2: हाँ, बिना राखड़ के हमन पूछ लो
1: हाँ हाँ
2: कभी नहीं छिचन हम जे फूल।
1: वाह वाह
2: और जे फूल देखे के लायक पटेल मनिया के कहते थे किसे कमा थसनो धान हमार गिरे नहीं।
1: अच्छा
2: हमन ऐसे बतर में लगा था पीछे एक राय।
1: अच्छा अच्छा
2: अब ज्यादा आगू लगे तो हम तो इतने बाढ़ जाते
1: बाढ़ जाते। तो किसान मन सुना भाई हमारे किसान संगवारी के गोट बात कैसे तकनीक ला अपनाते थोड़कन पिछुआ के जगह है तो थोड़कन ऊंचाई हर कम हुई का है। और बहुत अच्छा बात है किसान भाई कि आप मन सही बात ला बताओ और किसान के जो काम होते बतर ले होते
2: जी।
1: और समय ले होते है ना तो ये सब चीज ला आप मन अपनाओ तो हमारे संग में बढ़िया गोठियावा एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
3: तो संगवारी हो देखा बलार साहब किसान कैसे अपन कहानी बतात रही ने अपन जुबानी कैसे उमन फसल विविधीकरण करते हैं कैसे ग्रीष्म काल में रागी की खेती करी ने और कैसे अवैया समय में जवा फूल धान के खेती करी ओमन के जुबानी सुनत रहन ओमन के कहानी। अब चला धरती महातारी ने सुरता करना है और धरती वंदना से जुड़े गीत है एक ठन संझा बिहनिया तोर गुण लग गावा रियाजुद्दीन मिर्जा और संगवारी मन गाय ने गीतला आव सुनी गीतला।

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संगवारी हो शुरू हो गए जी आप मन के मायारू कार्यक्रम जेकर नाम हावे चिट्ठी मिलीस। चिट्ठी पत्री और ईमेल ला सकेल के धर के मैं लेके आए हाँ आप मन के डहार। मैं हाँ आप मन के संगी राम विलास पटेल एक पैताओ झोका राम राम जय जुहार। संगी हो राम राम जय जुहार इला लिखी ने भाई एक पैताओ नहीं कहा था तो एक पैताओ कहना पड़ी। संगवारी हम लिखी ने राम राम जय जुहार तो संगवारी राम राम जय जुहार जी आप मन लिखा था कहाँ ले लिखा था पहली बता दी कहाँ ले लिखा तेला

बाबा कुटीर रायगढ़ ले शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, भाई आशिक चौहान, ये मन लिखी ने मन का लिखा थे 12 जून के सांझा बेरा मा शुक्रवार के हमार लोकगीत ल सुनेन, बहुत बढ़िया लागिस और ये कार्यक्रम में अब्बड़ अकन के चिट्ठी पत्री ल शामिल किया गिस, संगवारी मन के मेल ल भी शामिल किया गिस, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही से, प्रस्तुतकर्ता दीदी ला गाड़ा गाड़ा बधाई और धन्यवाद। तो संगवारी हो ये दिन के कार्यक्रम ला स्वप्निल नामदेव नोनीहर पेश कर रही से, तो कार्यक्रम के माध्यम से आप मन के बधाई शुभकामना पहुँचा थे और आप मन हमार कार्यक्रम से जुड़ाओ, ईमेल कराओ, चिट्ठी मिलिस के डहार एकर बर शिव कुमार चौहान और आप मन के पूरा परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही माया दुलार बना के हमार डहार जुड़े रहा। आगू लिखा थे सप्रेम साहेब बंदगी जी, तो संगवारी हो साहेब बंदगी साहेब आप मल्ला भी, आप मन हावा गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन भाई, मोतीम भाई मानिकपुरी, आप मन कहा था 9 जून के हेलो संगी कार्यक्रम ला कोयल के आवाज़ जैसे सुनाई सुमित्रा पटेल दीदी हर, बहुत सुघर लागी साहब कहा थे, और 10 जून के लोक रंजनी ले सुनाइस अनुपमा दीदी हर, हमार मन के पसंद के गीत ला सुनाइस, अब बड़ बढ़िया लागिस, नीक लागिस, सुघर लागिस, झन पूछाओ, हमर दिल हर खुश हो गए, हृदय हर गदगद हो गए कहा थे। 11 जून के हेलो संगवारी सुनाइन स्वतंत्र महन साहेब जी, बहुत बढ़िया लागिस प्रस्तुति मन के, जोरदार बातचीत रही से और शानदार प्रस्तुति रही से, और 12 जून के चौपाल कार्यक्रम में सुनाइस स्वप्निल नोनीहर, ये दिन पपीता के खेती के बारे में बताइस और सुघर सुघर गीत गोविंदला हमर लोकगीत के डहार लेके आइस, बहुत सुघर प्रस्तुति रही से, आप जम्मो प्रस्तुतकर्ता मन बहुत ही बढ़िया तन मन लगा के कार्यक्रम ला पेश करता और हम उन भी तन मन लगा के सुनथन, कार्यक्रम में आनंद आते, कार्यक्रम बढ़िया लागते, नीक लागते, मीट लागते, सुघर लागते और ये सब लागते, एकर सेती हमन हमार आप मन के डहार ईमेल करथन कहा थे। तो संगवारी हो आप मन के माया प्रेम हर हावे जेकर ले हमार प्रस्तुतकर्ता दीदी बहनी संगी संगवारी जोहरिया मन और बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करे बर उत्साहित होते, हर संगवारी के हर श्रोता के पसंद के गीत ला हमन सुनाए के प्रयास करथन, एमा समय जरूर लागते, आगू पाछू करके होते, आज आप मन के गीत बाजिस तो कबू दूसर के गीत बाजिस, कबू हमला समय के हिसाब से, कबू दिन के हिसाब से गीत के चयन करना पड़ते, तो हमार प्रयास वही रहते कि आप मन जैसने समय के हिसाब से फरमाइश करता वैसने गीत आप मतलब परोसिन करके, और रही बात हेलो संगी और संगवारी के तो एक फरमाइश तो आप मन खुद करता अपन के फोन कॉल के डहर में, तो संगवारी हो जितेंद्र दास मानिकपुरी जी और पूरा परिवार आप मल्ला कबो हमन धन्यवाद, हमार कार्यक्रम ला सुनता बढ़िया से, ईमेल करता, समीक्षा करता, हमार आकाशवाणी रायगढ़ के यूट्यूब चैनल में भी आप मन समीक्षा बरकरार रखता बनाए रखता, एक बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। आगू लिखत हैं ये मन हावे कहाँ ले हावे जी, ये मन हावे माँ महामाया चौक मेघा पारा ले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल और दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, पूरा पटेल परिवार मन भेजिन है, ये मन कहा थे 8 जून के चिट्ठी मिलिस कार्यक्रम हमार लोकप्रिय उद्घोषक हमार काका दादा कहिया भैया श्री दिलीप चौधरी साहब हर प्रस्तुत करिस, ईमेल और पोस्ट कार्ड ला बड़ अकन के पढ़ी शामिल करिस, अच्छा लागिस, बोरा बोरा बधाई। हाँ बोरा बोरा बधाई देते हैं हमार बोरा बोरा जो बधाई है संगवारी को आप मन के डहार ले हमार डहार ऐसे हमन एला दिलीप चौधरी भैया डहार भेज देते हैं अहू मन झोंकदारे हो ही। अवैया समय में लिखा था आप मन कि 9 जून के मंगलवार के हेलो संगीला धर के लाइस हमार दीदी सुमित्रा देवी पटेल हर आनंद आगे मन भावन लागी सफल प्रस्तुति पर हृदय ले झमाझम बधाई झमाझम आप मन अभिनंदन स्वागत वंदन संगवारी आप मन के समीक्षा पर और कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे आप मन के बधाई। 10 जून के लिखा था आप मन लोक रंजनी कार्यक्रम ला लेके आ रही से हमार दीदी अनुपमा जी लाजवाब प्रस्तुति रहीस भारी सुघर सुघर गीत ला सुने पर मिलिस और सुनाइस एकर बर बहुत अकन के बधाई पसर पसर बधाई कहते हैं एक पसर दू पसर कथन न हमन हाथ में जी संगवारी हो काम हो गए मितान बोरा बोरा झवा झवा दिया दारी। तो कार्यक्रम के माध्यम से अनुपमा दीदी के डहार पहुँचा थे बधाई। 11 जून के आप मन हेलो संगवारी सुने रहा
स्वतंत्र महन जी के भारी सुघर प्रस्तुति में, यानी बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही से, सुंदर फरमाइश गीत जो रही से अच्छा लागिस कहते हैं, एक बार हृदय ले धन्यवाद, कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि आपो मन धन्यवाद आप मन की ईमेल पर। यही दिन किसानवाड़ी कार्यक्रम में हमार दीदी कोयली जैसे बोली दीदी सुमित्रा पटेल जी हर खेती किसानी के लिए जानकारी लेके आईस, बहुत उत्तम लागिस, एक बार अंतस ले बधाई और शुभकामना। तो संगवारी हो, किसानवाड़ी हो, चौपाल हो, हमन हर दिन संझा 7:20 के लेके आथन आप मन भर बहुत सुगर सुगर जानकारी, खेती किसानी ले जुड़े हुए विषय रहते, कुछ ऐसे विषय रहते सामाजिक रहते, कुछ दिवस विशेष में रहते और कुछ हमला जागरूक करते, कुछ हर सचेत करते, बहुत सारा हमन विषय में जानकारी साझा करथन। आप मन ये कार्यक्रम ला सुनथा, समीक्षा लिखा, एक बार धन्यवाद है। 12 तारीख के आप मन लिखा था लोकगीत कार्यक्रम ला सजा रही से हमार उद्घोषिका दीदी स्वप्निल नामदेव हर बाहरी सुपर अच्छा लागिस, मस्त लागिस, धन्यवाद कहा था, एक बार कहा थे। और 13 तारीख के किसानवाड़ी कार्यक्रम ला अनु साहू दीदी हर लेके आ रही से उत्तम बीज, कम तो ज्यादा फायदा, हमला अच्छा लागी, सफल जानकारी बहुत बढ़िया रही से हृदय ले बहुत बहुत बधाई कहते हैं और शुभकामना कहते हैं। संगे संग हमार कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई रामविलास पटेल जी और हमार कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रमुख, केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख रवि आनंद जिला ट्रक ट्रक बधाई और शुभकामना और धन्यवाद कहते हैं। बड़ विकट आप मन बधाई दे था संगवारी, ट्रक में दे था, कब बोरा में दे था, कब झौघा में दे था, हमन अतकाच कबो कि आप मन के माया प्रेम जो बधाई है आप मन पसार में देव चाहे ट्रक में देव हमार बराबर है। आप मन के माया हर जब हमार डहर आते, आप मन के समीक्षा रहते तो हमार मन हर हृदय हर गदगद हो जाते, हमार जतका प्रस्तुत करता है सबों के मन हर भावन हो जाते, मन भावन हो जाते, अंतस ले मन के हृदय हर संगवारी हरियर हो जाते। तो आप मन रामकुशल पटेल जी आप मन सुघर ईमेल लिखा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आगू लिखा थे कौन लिखा थे तेला तो बताई, पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर जी और श्रद्धा निर्मलकर, कुमारी लोचन विद्यार्थी और गीतिका गिन्नी, एमन कहा थे करही बदल ली, कहा थे लोकगीत बहुत ही जनमानस में प्रसिद्ध हावे, लोकगीत हमार प्रकृति के बहुरंगी प्रवेश ला जो बदलत रीति रिवाज है ये सबो ला लेके आते और ओकर अनुभूति भी कराते, जैसे समय के वैसने जो गीत रचना रहते ओकर माध्यम से हमला जाने पर मिलते, राग के बारे में जाने पर मिलते, लोक जीवन के बारे में जाने पर मिलते और वो सब हर हमला बहुत बढ़िया सुघर लागते कहते हैं। और ऐसे सुघर कार्यक्रम आप मन के डहाले प्रस्तुत होत रहते, ऐसने में 11 जून के हेलो संगवारी कार्यक्रम ला लेके आ रही से स्वतंत्र महन जी, बहुत ही सुघर रही से सफल प्रस्तुति रही से, एक बार धन्यवाद कहते हैं। 12 जून के हमार लोकगीत ला निराले आवाज में लेके आ रही से ध्वनि तरंग ले हमार डार भेजे रही से कहते हैं स्वप्निल नोनीहर, बहुत बढ़िया लागिस, मीठी मीठी आवाज में कार्यक्रम ला प्रस्तुत करें, काबिले तारीफ रही से, संचालन पर स्वप्निल नामदेव नोनीला बधाई। तो बधाई पहुँचा थे पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर जी आप मन के पूरा कुटुंब के, हमार जितका भी प्रस्तुतकर्ता मन के नाम ले है उन तक आप मन के बधाई पहुँच गिसना। आप मन पत्र लिखा, ईमेल लिखा हमार डहार, एक बार धन्यवाद। आगू लिखा थे कौन लिखा थे तेला तो बताई जी, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू लिखा थे 9 जून के प्रसारित हेलो संगी कार्यक्रम लेके आ रही से सुमित्रा पटेल हर, और यही दिन फोन इन कार्यक्रम संग बढ़िया गोड़ बात होइस और सुघर छत्तीसगढ़ी गीत ला सुन के सुनाइन, बहुत ही बढ़िया लागिस, मन भावन रहीस, हृदय हर गदगद हो गए, बढ़िया तरोताजा लागिस। आप मन के कार्यक्रम बहुत ही भरपूर मनोरंजन ले भरपूर रहते, प्रेरणादायी रहते और लोक हित ऐसी रहते, बहुत सुघर लागिस। सुघर प्रस्तुति पर सुमित्रा पटेल और आकाशवाणी रायगढ़ परिवार ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई कहते हैं। तो मदनपुर कवर्धा के हमार श्रवण कुमार साहू जी आप मन के ये ईमेल पर आप मन ला हमन धन्यवाद कहते हैं। ऐसे ही माया दुलार बना के हमार डहार समीक्षा जरूर साझा करिया। आओ संगवारियों देखा, ऐसने ही क्रम में रेडियो श्रोता संघ वार्ड 20 आगरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले ईमेल आई से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, पूरा साहू परिवार एमन लिखी ने, एमन कहते हैं आकाशवाणी केंद्र के 90 बच्चर पूरा हो गए कहते हैं और यहाँ से 90 बच्चर के पूरा हो के पहली ले जो एक प्रयास रही थे आकाशवाणी के संग श्रोताओं की वाणी बहुत ही बढ़िया रही से और ये क्रम में आप जम्मू के प्रयास सराहनीय रही से, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम आप मन के डहाले प्रस्तुत किया गिस और बहुत सारगर्भित कार्यक्रम रही से जम्मू संगवारी मल्ला, उद्घोषिका मल्ला, उद्घोषक मल्ला,
कंपेयर मतलब बहुत बहुत बधाई कहत हैं। तो संगवारी आप मन के बधाई पहुँचत है, जो भी है आप मन के झोला झोला है, झौगा झौगा है, बोरा बोरा है, सब बोला हमन समेट दारेन और ट्रक में भर दारेन। तो संगवारी मन आगू लिखत हैं, चौपाल कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण के दिन बहुत ही बढ़िया पर्यावरण से सजे लोकगीत रही से हमारे लोकगीत क्रम में, और ये लेके आ रही से रामविलास पटेल जी बहुत ही सुमधुर आवाज में प्रसारित करें प्रस्तुत करें, बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा अच्छा गाना सुनाइन, एक पर बहुत बहुत बधाई। संग में कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद जिला भी सादर सादर गाढ़ा गाढ़ा बधाई कहते हैं। तो संगवारियों आप मन के शुभकामना है, गाढ़ा गाढ़ा बधाई है, ये सब वो हमारे कार्यक्रम प्रमुख तक पहुँचा थे कार्यक्रम के माध्यम ले, और आप मन के जो पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम रही से आप मतलब बढ़िया लागिस, एक बार हमन भी आप मतलब धन्यवाद कहते हैं कि हमारे प्रयास आप मतलब अच्छा लागिस। आगू लिखत हैं, 1 जून के संगवारी हो जो भेंटवार्ता रही से बहुत बढ़िया रही से, जो मातृपितृ दिवस रही से वैश्विक मातृपितृ दिवस के ऊपर जो स्वाति गुप्ता से गोमती साहु के बातचीत हो रही से बढ़िया लागिस। यही दिन दूध उत्पादन में मनोज नायक के रामविलास पटेल के गोड़ बात बहुत ही बढ़िया लगी संगवारी हो कहते हैं, और 1 जून के क्रम चिट्ठी मिलिस के लाजवाब प्रस्तुति पर पटेल जिला बधाई कहते हैं। 2 जून के हेलो संगी के मनमोहक प्रस्तुति पर सुमित्रा दीदी ला बधाई कहते हैं। 3 जून के क्रम लोक रंजनी के सुघर प्रस्तुति पर रजनी दीदी ला बधाई। 4 जून के क्रम हेलो संगवारी पर स्वतंत्र जी ला बधाई, और 4 जून के माटी के गीत माँ गोमती दीदी के बढ़िया प्रस्तुति रही से, और 5 जून के हमारे लोकगीत के अच्छा सलेक्शन और प्रकृति ले आधारित अच्छा अच्छा लोकगीत सुनाइन रामविलास पटेल साहब, बहुत बढ़िया लगी। और 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर सजरी से झरोखा कार्यक्रम यर भी बढ़िया लगी जिला प्रस्तुत करी रजनी दीदी हर। 6 जून के क्रम चिंतन मनुष्य में नशा पर केंद्रित चिंतन बहुत ही बढ़िया रहीस। तो संगवारी येला लिखत रही ने, नान घाट कातल बोडले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टीकेश्वर और रितु राजपूत। तो भाग सिंह राजपूत जी हमारे नियमित श्रोता हवा, आप मन संझा नहीं बल्कि बिहनिया ले लेके संझा तक के पूरा हर एक कार्यक्रम ला सुनता, आप मन के समीक्षा चिट्ठी मिलिस माथे पत्र मिला माथे आकाशवाणी रायगढ़ के यूट्यूब चैनल में भी आते, और आप मन एक जागरूक श्रोता हवा। वास्तव में ये जो क्रम है कार्यक्रम है जो प्रस्तुत करीन है, जो दीदी मन है, बहनी मन है, भैया मन है, संगी मन है, संगवारी मन है, ये सबों के डहार आप मन के जो कहना चाहिए बधाई है एयर कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे। भाग सिंह राजपूत जी आप मन हमारे डहार ईमेल लिखा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आगू लिखते हैं, सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू रामकिशन दुलीचंद साहू सत्यम साहू। आप मन कहा था कि लोक रंजनी बहुत बढ़िया लागते, एकर अलावा हमार लोकगीत बढ़िया लागते, हेलो संगवारी हेलो संगी सबो हर बढ़िया लागते, हमन नियमित रूप से सुनतन, हमन पत्र ईमेल भी भेजतन, ईमेल भी शामिल होते, हमार मन गदगद हो जाते, और बढ़िया बढ़िया आप मन गीत ला सुना था परोसता हमार डहार, एकर बर हमन मजबूर हो जाथन आप मन ला ईमेल करे बर। तो संगवारी हो देखा ईमेल करत रही शामिल होत रही, और नहीं हुई तो घबराहू झन, और यह समय में शामिल हुई हमार प्रयास रहते ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल चिट्ठी पत्री शामिल करी, लेकिन समय के बंधना में बांधे रही थे हमार जो क्रम है तिमनहर। तो एक बार हमन कहना चाहब आप मल्ला कि अगोरा करिए, और शामिल नहीं हुई शामिल अगर नहीं हुई तो हताश झन हुई। आगू लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता हमें एमन हमें बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य ले रामचंद माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा हीरालाल सुंदर दीपक कुमार घनसानी किरत राय वाधवानी गोविंद साहू समतलाल साहू प्रदीप कुमार साहू माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी पूरा माखीजा कुटुम्ब कहते हैं। एमन हमार कुछ और श्रोता मन जुड़ी हैं। तो रामचंद माखीजा जी आप मन लिखा था 1 जून के प्रस्तुत जो कार्यक्रम रही से रामविलास पटेल साहब के बहुत ही सुंदर रही से, काबर की विश्व दुग्ध दिवस रही से, और विश्व दुग्ध दिवस में सुंदर दुग्ध उत्पादन से जुड़े मनोज नायक से जो बातचीत हुई बहुत ही सारगर्भित रही, दिल ल छू गिस हृदय ल छू गिस कहते हैं। और ऐसे कार्यक्रम बहुत ही कम सुने पर मिलते जो उनके वास्तव में किसान मेहनत करा थे परिश्रम करे थे और कर पूरा परिश्रम करके कैसे आगू बढ़ा थे और पूरा कहानी भेंटवार्ता में रहीस कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रस्तुति खातिर पटेल जिला बहुत बहुत बधाई कहते हैं। तो संगवारी हमार प्रयास रहते जैसने दिन वैसने गीत वैसने कार्यक्रम वैसने क्रम हमन लेके आथन, और प्रयास करते हैं कभू कभार चूक भी हो जाते, और
हमर पूरा प्रयास रहते भेंटवार्ता अगर नहीं हो पाए तो हमें चर्चा में जरूर करथन कि ये आज दिवस ऐसे है वैसे है जो भी है उकर उपलब्धि ला या उकर काबर मनाया जाते या कैसे हमला करना है एकर बारे में हम प्रयास करथन। तो संगवारी आप मन ईमेल लिखा चिट्ठी मिलिस माँ रामचंद माखीजा जी एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी वो चिट्ठी मिलिस के क्रम यही सिरावत है। अब चला हमारे चलबो लोकगीत ला सुनबो एक ठन। लोकगीत के बोल हावे ये भावा के मारे, सुशीला ठाकुर और संगवारी मन गायन है गीतला, आवा सुनी।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो संगवारी और भेंट वार्ता के क्रम में सुनिए अमेरी विकास खंड बरम के लिए कृषक हरीश चौधरी से गांव में आर्थिक समृद्धि और जल संग्रहण का बेहतर विकल्प तालाब में मछली पालन। आवाज सुनिए किसान की जुबानी।
5: संगवारी हो राम राम जय जुहार। हमर भेंट वार्ता किसान के अंश में हमन ऐसे किसान से भेंट करत हन जोन मन युवा हावे और युवा होए के संगे संग एमन खेती किसानी मछली पालन के काम ल करत हैं। तो ऐसे में सबले पहले तो किसान भाई से भेंट करत हन और जानत हन ओमन की जुबानी ओमन के परिचय। सबले पहले किसान भाई ला राम राम जय जोहार।
6: राम राम जय जोहार।
5: आप मन के परिचय बताइए।
6: मोर नाम हरीश चौधरी है। मैं ग्राम उमेरी के निवासी हूँ।
5: अच्छा अच्छा, तो हरीश चौधरी जी ये बताओ उम्र कतका हो गए?
6: माला हो गए, अभी उम्र मोर 21 साल हो गए।
5: और पढ़ाई लिखाई?
6: पढ़ाई लिखाई मोर अभी कॉलेज करत हमें सेकेंड ईयर में है।
5: अच्छा, और कब उतार करता?
6: पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ हम खेती किसानी करथन और अब हमर कोला में हमन कर रहे मछली पालन।
5: अच्छा, मछली पालन के बारे में कैसे सोचा?
6: हमर जब जो हमर जमीन रहीस मुहर ना एकदम तालाब के पास में है, तो वो में पानी बार रह जाए,
5: पानी और मार जाए,
6: मार जाए।
5: हाँ।
6: जोन में हमर धान या कछु भी फसल जगान वो सड़ जाए या फिर फसल लकाटे के टाइम में
5: दिक्कत
6: हो।
5: हाँ।
6: तो ओला हमन सोचेन जब हमर ठीक पानी और पजर के भी आत रहीस तालाब के, तो हमन मछली पालन क्यों ना किया जाए कह के सोचेन। ओकर बाद हमन तालाब के गहरीकरण करवाएन, डोली ला हमन खेत ला तालाब बनवाएन, ओकर बाद ओमे हमन मछली पालन के काम शुरू करें।
5: तो मछली पालन के जो गहरीकरण के काम है एकर बर कुछ सहायता मिली आप मन ला सरकार ले?
6: हाँ, हमला बिल्कुल सरकार के तरफ से सहायता मिले रहीस।
5: अच्छा,
6: और समय में एक स्कीम चलत रहीस, मला खास उतकी पता नहीं है, मोर पिताजी ओखाने वही रहीस, तो हमला सरकार के तरफ से सहायता मिले रहीस।
5: अच्छा, गहरीकरण
6: करे बर।
5: अच्छा, कतका एरिया में है आप मन के तालाब?
6: हमार तालाब हर है लगभग 20 से 22 डिसमिल के आसपास आवे।
5: अच्छा, 20 से 22 डिसमिल।
6: हाँ।
5: तो मैं गहरा कतका कर रहा आप मन?
6: हमन हमार गहरा करे रहे लगभग 6 से 7 से 8 फीट लगभग समझ।
5: अच्छा,
6: पथरीला जमीन के कारण एकदम सही तरीका से गहरा नहीं हो पाई से।
5: तो तालाब किनारे है तो का पानी हमेशा रहे थे?
6: पानी रहे रहते।
5: अच्छा, तो मछली पालन करा तो मैं कैसे प्रबंधन कर रहा आप मन?
6: जब हमन मछली पालन करें तो सबसे शुरुआत में हमर ठीक खातु के उत्पादन है, तो हमन खातु के उई करें और हमर घर ही में एक ठा हालर है जोन में हमला बहुत कोढ़ा जोन लगत है भूसा, ओकर उत्पादन होते है, तो वो सबसे छोटे छोटे मतलब घरेलू उत्पादन करें हमन सबसे शुरू और कम मतलब 3 से 4 किलो ही बीजा छोड़ें साधारण मछली मन के, ओकर बाद धीरे से हमन ओला बढ़ोतरी करत गए।
5: अच्छा।
6: हाँ।
5: तो मतलब शुरुआत में पानी भरा उमा है ना?
6: हाँ, पानी भरे,
5: चूना उना डाले रहा?
6: हाँ, चूना डाले रहे हमन।
5: अच्छा, चूना डाले के कारण का है?
6: चूना डाले के कारण ये कि पानी हर साफ रहते,
5: साफ रहते और हाँ। पीएच मान हर
6: हाँ।
5: बढ़िया
6: रहते।
5: चूना का है बोला साफ शुद्धिकरण कर देते।
6: हाँ।
5: तो चूना चाहे खेत में डालन चाहे पानी में डालन और अपन के जो काम है बोला बखूबी करते और वह माटी पर भी पानी पर भी लाभप्रद रहते,
6: लाभदायक रहते।
5: पहले तो चूना गरवा मन के जो कोठारी से है ना, तो जो उनके कोटारी से तेला भी पुताई करें।
6: हाँ।
5: ताकि कैल्शियम तत्वों की प्राप्ति हो मल्ला।
6: हाँ।
5: चलो भाई, अच्छा बात है कि आप अपन के उपलब्ध संसाधन से कोढ़ा है गोबर के खातु तेला डाल के आप मन इला करत है। हाँ। और ये मैं बताया कि अभी की स्थिति में वहाँ कतका डाले आप मन बीजा?
6: अभी की स्थिति में हमन लगभग हमन अभी 10 किलो बीजा डाले हन।
5: 10 किलो डाले हन।
6: हाँ।
5: अच्छा,
6: और पहली ले भी रहीस मछली।
5: अच्छा, तो इमे और कुछ चीज ध्यान रखना पड़ते पानी के?
6: हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ते पानी में, मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए, मतलब गंदगी कहे के मतलब पानी खराब मारे पानी ला टाइम टू टाइम ऑक्सीजन जोन में मिलते उसने करना चाहिए और पानी के जल स्तर कम नहीं होना चाहिए, वो सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। पानी जैसे ही कम होते उकर बाद मछली मन का होते एक छोटे छोटे मतलब खाए बर लग जाते, जब खाए बर मन के सही तरीका से नहीं मिले तो।
5: हाँ।
6: और कई प्रकार के रोग भी रखते मछली मन के, तो वो सब ला भी ध्यान रखना पड़ते।
5: अच्छा अच्छा, तो ये में विशेष तौर से आहार प्रबंधन के बात होते तो हाँ। आहार तो अपन के उपलब्ध संसाधन ले दे देता का
6: हाँ, हाँ।
5: या जो भी आप मन के खेती किसानी करता
6: हाँ।
5: जो नर की अगर आ जाते कढ़ा फोटका रहते हाँ। तेला भी डाल
6: सब हमन डाल देता।
5: तो का मछली में डाले आप
6: मन? अभी वो में हमन डाले हन कमन काट ग्रास काट कथे और फंगस कथे।
5: अच्छा
6: हाँ, और इन्हें बस दो तीन प्रकार के ही मछली डाले हन।
5: हाँ हाँ,
6: अभी हमन का है एक टाइम निकाल डाले हन, तो अभी ज्यादा नहीं डाले हन, अभी एक बार 10-15 दिन पहले ही निकाले हन, अभी यही 10-15 दिन में और बीजा लानको में और डालबो हमन।
5: अच्छा अच्छा, समय के हिसाब से देख के वाला निकालता का तो
6: हाँ।
5: तो ये जैसे मछली पालन के काम है, तो ये मछली पालन में आहार हो गया आप मन के देख रेख प्रबंधन हो गए
6: हाँ।
5: तो ये में जाल चला के भी देखना पड़ते का?
6: हाँ, जाल चला के भी देखना पड़ते। हमन जब भी मछली ला निकालथन जाल से ही खेल के समझा निकालथन।
5: तो जैसे मैं पहली बार आप मन कर रहा है तो इनकम कैसे रही से?
6: हमन पहली बार जब डालें तो लगभग 6 महीना के अंतराल में हमन पहली बार मछली निकालें, तो तब हमर मछली मन के साइज हो गए रहीस, मतलब 700 ग्राम 800 ग्राम कई ठीमन किलो किलो साइज लगभग हो गए रहीन। तो वो में हमला जब भी हमन ओला जब बेचें तो हमला बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलीस, 20-25 हजार के हमर शुरुआती 6 महीना में ही मछली होगी। जोन हर के हमर अन्य फसल जोन में अगर खेती कर रहे थे ती में हमला साल भर में वो में लगभग सिर्फ 6-7 हजार के कमाई हुए उतकी क्षेत्र में।
5: बीस में धान के इनकम कम हो रही थी, 6 महीना
6: में हमला लगभग धान के मामला से वो लगभग हमला 3 गुना हमला फायदा मिले है।
5: अच्छा, फिर उकर बाद वो तो चलते छे कहा?
6: चलते छे वो हर।
5: तो अच्छा इनकम के साधन हो सकते है और जल स्तर भी उनमें बरकरार रही थी। तो आप मन के बोर के जो सिंचाई आपन के जो बोर है ओमा जल स्तर कैसे है?
6: ओमा जल स्तर हमर बोर में थोड़े से कम है, लेकिन का होते हमर तालाब के पास में है, हमर जो मछली बर तम तालाब कोड़ा है, तो हमला पानी के बहुत ही कम हमला मतलब बोर चालू करे लागते, वो में पानी के उसने कमी नहीं रहे समझा।
5: अच्छा अच्छा, आसपास में तालाब है
6: हाँ।
5: मतलब किनारे माया है तो वहाँ से भी एक लेवल मिल
6: हाँ, लेवल मिल जाते।
5: अच्छा,
6: और का होते कई जिन अन्य जो किसान रहते हैं अपन के बोर के ओला भी मतलब दो तरफ चलाते हैं, तो एक तरफ घर अंग पानी जाते हैं तो दूसरा टाइम ला इति अंग छोड़ देते हैं अन्य खाली वही बार।
5: अच्छा अच्छा अच्छा,
6: और एक दो किसान है जो मन उन्हें हमला देते हैं हमें समझा पानी ला।
5: अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है कि जल स्तर बरकरार है, इनकम भी जनरेशन होते और मछली पालन समय की मांग है, मछली पालन करके योजना के भी लाभ लेके और जो विशेष जानकारी के साथ में अगर व्यवसाय करे तो इनकम बहुत अच्छा,
6: बहुत अच्छा इनकम है। लेकिन मैं बस तुम्हारा अपन के थोड़े कीमती समय देना रहते, बहुत ही अच्छा तरीका से ध्यान रखना होते। का होते अगर तुम्हारे तालाब अगर तुम घर से दूर में है तो चोरी चकारी के बहुत डर रहते
5: हाँ।
6: तो ओला बहुत अच्छा से ध्यान रखना पड़ते, हो सके तो बढ़िया घेरावट के अगर तुम्हारे सुविधा है तो घेरावट कर देना ही सबसे मूल मंत्र है ओकर।
5: चलो बहुत बढ़िया बात बताओ, आप मन हरीश जी की अच्छा काम कर सका था और आप उनके लगता में है तो अच्छा होकर से आओ अच्छा जनरेशन हो सका थी इनकम के
6: हाँ।
5: बहुत अच्छा जानकारी साझा करा एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। राम राम जय जोहार।
6: राम राम जय जोहार।
4: संगवारियों देखा बढ़िया भेंटवार्ता, सुने ना भेंटवार्ता के बाद बेहतर उत्पादन के लिए अपनाए उचित प्रबंधन। संगवारी हो काम कोई भी हो, छोटे हो या बड़का हो, संगवारी हो हमला प्रबंधन बहुत जरूरी रहते। ऐसे में अगर हम खेती किसानी के हिसाब से बात करथन प्रबंधन के बाद, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, माटी के जांच करावा, खेत के जो पार मेढ़ है तेला ठिन्ना करा, दुरुस्त करा, माटी में गोबर खातू डाला, वर्मी कंपोस्ट हरी खाद ला डाला ताकि कार्बनिक तत्व हर बाढ़ी, संग में फसल चक्र अपनावा, अदल बदल के फसल ला लगावा, बीज के बुआई के पहले अंकुरण के जाँच करावा या अंकुरण के जांच खुद कर लेवा, बीज उपचार भी जरूर करा, उन्नत और प्रमाणित बीज के उपयोग करा, मान्यता प्राप्त दुकान ले, पक्का रसीद के संगमा खरीदारी करा। ये संगमा संगवारी हो आप मन जो ट्राइकोडर्मा है, PSB कल्चर है, राइजोबियम कल्चर है, ये मन के सही समय में सही क्रम में उपयोग करा, उचित दूरी

अपनावत संगवारी हो, जो पौधा ले पौधा के बीज ले बीज के दूरी है सब ला अपना करके आपन बेहतर लाभ ले सका था। संग में संगवारी हो हमन जानबो कि आज के दिन जो है विशेष है, खास है, काबर की आज के दिन ला हमन बनाथन विशेष तौर से बुजुर्गों के प्रति अपमान के जागरूकता के लिए विश्व दिवस के रूप में। तो आज के दिन ला हमन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाथन। जो भी हमार बुजुर्ग होते हैं, सियान होते हैं, है ना, वृद्ध होते हैं, संगवारी हो, उमन जो जो नट्ठा होते हैं, पुराना होते हैं, उमन पूरा अनुभव के खजाना रहते हैं, उमन बहुत कुछ अनुभव रहते हैं अपन के जीवन के, और वही हिसाब से अपन के लैका मतलब सिखाए के बढ़ाए के प्रयास करते हैं। संगवारी हो मारना पीटना हर ही संगवारी दुर्व्यवहार नहीं हो, बल्कि ये तो गलत काम है, दंडनीय अपराध है। उमन ला बातचीत से ठेस पहुँचाना, उमन के अपमान करना संगवारी हो, ये हर दुर्व्यवहार हवे। तो एकर प्रति जागरूक करना यानी ये सब नहीं हो, एकर पर हमला संगवारी हो जुर मिल के आगू आना पड़ी, और उमन के प्रति जो उपेक्षा हमन करथन, चाहे मानसिक उपेक्षा के बात करें या भावनात्मक चोट के बात करें, वो सबला संगवारी हो त्याग करना पड़ी। उमन के आत्मसम्मान के हमला का करना पड़ी संगवारी हो, सम्मान करना पड़ी, उमन के संग समय व्यतीत करना पड़ी, उमनला भी हमन के काम काज में सक्रियता निभा पर कहना पड़ी, यानी सक्रियता कहने का मतलब हाथ पैर नहीं चले तो संगवारी हो विचारधारा में उमनला शामिल करना चाहिए, हमन योजना ये बनाथन ऐसे करना चाहथन, वो चीज़ ला उमनला भी बताना जरूरी है, यानी कि निर्णय में भागीदारी करके भी उमन के हमन प्रति सम्मान व्यक्त कर सकत हन। संग में संगवारी हो खेत बचाओ अभियान चलत है, 1 जून ले 30 जून तक चलाए जाते, तो इमें हमन आप मतलब कहना चाहे वो संगवारी हो खेत के हाल बहुत ही बढ़िया रखे बर, यूरिया के खपत ला घटाए बर आप मन नील हरी सवाल के उपयोग करा। नील हरी सवाल संगवारी हो बहुत ही अच्छा कारगर और बहुत ही लाभप्रद हावे, और एकर उपयोग करके संगवारी हो आप मन प्राकृतिक तौर से भुइयां ला फसल ला नाइट्रोजन के उपलब्धता करा सकत है। एकर से खेत के उपजाऊपन भी बढ़ी और नाइट्रोजन के उपयोग हर हमन जो यूरिया करथन कर उपयोग हर घटी। तो संगवारी हो चीज़ ला आप मन ध्यान रखा, और एक बार विशेष तौर से अभियान चलाए जाते गांव घर में, अभियान चौपाल चलाए जाते, बैठकी लगाए जाते, और विषय के जानकार मन विशेषज्ञ मन गांव-गांव भी चलते हैं, और खेत बचाओ अभियान चलते हैं, तेमा शामिल जरूर हो, मन के जानकारी ला ग्रहण करके आगू खेती किसानी में बढ़ा। संग में मुद्रा योजना हवे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप मन के व्यवसाय ला बढ़िया संबल प्रदान कर सकते हैं। एमा संगवारी हो 4 कैटेगरी में ऋण मिलते, शिशु ऋण जिनमें कि 50,000 ले शुरू होते, किशोर ऋण जिनमें कि 50,000 ले 5 लाख रुपये तक के लोन मिलते, तरुण जो ऋण रहते जिनमें 5 लाख ले 10 लाख रुपये तक के आप मतलब लोन मिलते, और तरुण प्लस 10 लाख ले 20 लाख रुपया तक के लोन मिलते। तो संगवारी हो आप मन के कोई भी व्यवसाय हावे, तो व्यवसाय ला आप मन बढ़ाना चाहता, सक्रिय करना चाहता, या आप मन ला पैसा के दरकार हावे, तो आप मन बैंक के डहार जाओ और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मोला लोन लेना है करके, ऋण लेना है करके कही है, तो संगवारी हो आप मतलब वहाँ के जो साहब मन रही वन पूरा बताही। तो संगवारी हो सब चर्चा ला अपन विराम देबो आज के, और जाके बेरा होते घड़ी रसोई हर इशारा करते कि अब बेरा हो गए, तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल विदा, राम राम जय जुहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। समय है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत का, और इसमें अब आप सुनेंगे राजेंद्र मेहता के स्वर में प्रेम वारवर टोनी का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है गोविंद प्रसाद ने।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वर में ये गीत जानिसार अख्तर का लिखा हुआ अभी आपने सुना। इसे संगीतबद्ध किया भूपेंद्र सिंह ने। और इस गीत के साथ ही अब गैर फिल्मी गीत ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि

0: तान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया। दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।
2: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस संदेश से पहले हमने आपको डबल एक्सल फिल्म का गीत सुनवाया था। आवाजें थी सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज, प्रतिभा बघेल और साहिद माल्या की। मुदस्सर अजीज़ का लिखा गीत था और सोहेल सेन ने उसे संगीतबद्ध किया था। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं द डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत, वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया की आवाज़ में। कौसर मुनीर के बोल हैं, अनुराग सैकिया का संगीत।

वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया के स्वर में द डिप्लोमेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने।

0: यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि

0: की सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगल, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

आपकी परछाइयां इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाएं, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजनाएं हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
2: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
3: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुँच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
2: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
3: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीज़ें खास करके ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज़्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नज़दीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम हैं, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना 1/2 घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
2: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको?
3: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है,
2: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
3: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहाँ की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है, आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
3: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
2: जी,
3: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
2: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
3: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
2: जी।
3: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना

0: तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपये का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया
1: जी
0: और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपये ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपये का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। इनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिलें, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहाँ का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे, तो आखिर में

0: और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000, 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहाँ तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुँच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयाँ जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयाँ वहीं ज़्यादा आ रही हैं जहाँ घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाएं ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूँगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियाँ दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws under the Jan Vishwas framework. India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction from earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit. The private sector has a trust deficit. Non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, "Show me the person, I'll show you the crime." Bureaucrats in India say, "Show me the person, I'll show you the rule." Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chore, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the chore. So I think that mentality of has in the regulatory system of the license Raj, which by definition believed the world was shortage rather than abundance. Ambassador didn't have clients, it had hostages. But after that, we have released and we didn't get wiped out by foreigners. The fastest growing car companies are Tata's and Mahindra today. They are Indian companies. They are doing very well. So I think the notion that we should be scared of foreigners informed that debate, which is just a lack of low self-esteem. We don't have to be Western to be modern. We do have to be modern. So we have to create a high trust society. And that's why I think this agenda of formalization and moving to Jan Vishwas has been a very important shift in thinking about reforms rather than copying the West. I think China, Deng Xiaoping used to call Gorbachev stupid because he took all the Western reforms and blindly did them. And then he lost his job and Russia has never recovered. While China said, yes, we need to modernize, but we will modernize at our own pace. We will modernize at our own recipe and we won't blindly copy the West. So I think that it is important to recognize that 1991 was important, but it was incomplete. We left out education. We left out formalization. We left out corruption. We left out bank reform. We left out labor reform. We left out primary education reform. So I think obviously every country is a river rather than a pond, and you can never step in the same river twice because the river has changed and you have changed, as Heraclitus used to say. But my sense is that building on the last 12 years of formalization, moving to rules, lays a strong foundation or a neve for Jan Vishwas

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: विविध संगीत में अभी जो ये गीत अभी आपने सुना, इसमें आवाज़ें थीं आशीष कौर और हर्षदीप रतन की, रणधीर सिंह का लिखा गीत और राजेश अतिबल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत ब्रज शर्वरीय के और साथियों के स्वर में है। सिया सचदेव ने इसे लिखा और गोविंद का संगीत है। ये गीत आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध संगीत, और ये गीत अशोक कुमार दीप का लिखा हुआ उन्हीं के संगीत पर आपने सुना। इसे आवाज़ दी थी आलोक कुमार ने। और कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए दयाराम दर्द फिरोजाबादी का लिखा ये गीत आज़म अली मुकर्रम के संगीत और आवाज़ में, साथ ही आवाज़ साधना सरगम की।

साधना सरगम और आज़म अली मुकर्रम का गाया ये गीत दयाराम दर्द फिरोजाबादी का लिखा हुआ था और इसे आपने सुना आज़म अली मुकर्रम के बनाई धुन पर। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम विविध संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है

आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें, आपके पत्र और आपकी खुशियाँ, ये है इस कार्यक्रम की रूपरेखा। और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, स्वीकारिए हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में ये पहली फरमाइश जो आप सबकी ही पसंद पर आप सुनेंगे वो है पेइंग गेस्ट फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत। पसंद आप सबकी है। इन्होंने हमें ईमेल भेजा पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सूरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बेमितरा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर के स्वर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ से और अगली फरमाइश अब है मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के लिए कन्यादान फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद करता हमारे श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानू अब्दुल जमीर मोहम्मद अलीम आसिफ और नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास शीतल जात सुशीला साहित्या मनोज मुकेश और अंकित साहित्या। रॉबर्टसन धर्रा मुड़ा से लंबोदर प्रसाद पटेल फैलेंद्र कुमार तेजराम सुरेंद्र कुमार पीयूष कृष्ण हेमंत कुमार राम ख्याल तुलाराम देवा श्रीधर रूप बसंत विवेक कुमार मानस और हरिशंकर पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है कन्यादान फिल्म का ये गीत।

सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के अनवर के गाए गीत के लिए, जिसे भाटापारा

तिरंगी से सुनना चाहा है। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झापेंद्र कुमार वर्मा ने छत्रपति संभाजीनगर से ईमेल भेजा। राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने गौशाला पारा रायगढ़ से पत्र आया है। विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता का शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, पंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, लक्ष्मीबाई, अनाज मंडी रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी और श्री शिंग ऋषि महानदी सिहावा पर्वतंचल ग्राम बिलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप सभी का पसंदीदा आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए।

0: आहिस्ता आहिस्ता हमारा कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा फरमाइशी पता नोट करें, पत्रों का ये पता नोट करें और इस पर अपनी फरमाइशें हमें भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़ और पिन कोड 496001।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत आंधी फिल्म से आप सबने सुनना चाहा है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ हैं, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। इसे सुनना चाहते हैं और हमें इसके लिए ईमेल भेजा रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र आया है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतिक बीरक और मीका बीरक का। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। हरदेव लाल पारावाड़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा बाजार पारा बेमेतरा से, कुमुदिनी शर्मा, ओंकार शर्मा, टिकेश्वर साहू, कीर्तन साहू, सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, ये हैं खट्टी महासमुंद से। इन सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत आंधी फिल्म से।

अंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, गुलजार के फूल और राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत के साथ ही अब फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम अनुरोध अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्ड